0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: थैंक यू, थैंक यू सो मच।
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Mini chances with big tickets.
2: 20 million dirham grand prize. 5 consolation prizes up to 1 million dirhams.
1: Plus big spin and weekly e-throws.
2: Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:08।
1: बॉलीवुड।

0: Love you, Zindagi. Love you a bit more on a Friday. So there, everybody keeps waiting for all through the week. It's a Friday morning. Kuch ghante kaam pe, uske baad to weekend.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: वैसे तो हमारे लिए हर फ्राइडे स्पेशल होता है, लेकिन व्हाट सो स्पेशल अबाउट दिस 18th ऑफ सितंबर? टुडे इज द इंटरनेशनल इक्वल पे डे. ऑनगोइंग एफर्ट्स चल रहे हैं टू काइंड ऑफ ब्रिज दैट पे गैप, राइट? ये क्या बात है कि लेडीज का अलग, जेंट्स के लिए अलग पैसे. हम रेडियो स्टेशंस में एक्चुअली काफी टाइम से, सिंस द इंसेप्शन, देयर इज इक्वल पे, समथिंग टू बी प्राउड अबाउट है. बट आज For all of us corporates, of course, you listen to me on your way to work. So, corporate जिंदगी में एक चीज है जो खास अहमियत रखती है, उसको celebrate करने का दिन. Today is the World Bamboo Day. You know what I mean? एक गहरा नाता है of this day with corporate, because it is all about the lena and dena of the bamboo, right? We hope that you give more than you get on this Friday, and indeed. All through this coming week as well. So, on that very auspicious note, let's kickstart the show. Yaar, aap jante hain, roz subah pehle ghante mein kya hota hai? This is the early morning request. Aur kuch gaane maine lagaye hue hain, jaise ki ye wale. Uncha Lamba Kad Forever from Welcome to the Jungle, coming up in just a while. If there is a song that you want to listen to, bahut zor se koi gaana sunne ka man kar raha hai subah savere, can't wait for the weekend. Then WhatsApp it to be 0543091062. That is our WhatsApp number, 0543091062. 10 साल से एक इवेंट को मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पर दुबई में. It is my all-time favorite event here in Dubai. Finally, it's going to get resurrected. किस इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ? अगर आप समझ गए, give me a call 800-1062. Otherwise, wait, I'm going to tell you all the details right here on The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

माइंड तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज, तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो राइट नाउ, देखो मुझे वेट ना इतने कराओ। लक तेरा लीन बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2 The Beat of Bollywood।
3: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
4: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
3: अलरास बोले तो
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
3: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
5: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
6: Creditmarkets.ae. Don't chase banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money. Are you ready?

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: इज इट जस्ट मी, आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी आज है? व्हाट आर द नंबर्स सेइंग? या 78% ह्यूमिडिटी से शुरुआत हुई आज दिन की। 32 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ टेम्परेचर, विंड्स ब्लोइंग एट 8 किलोमीटर्स पर आवर, हाईज ऑफ 36, लोज ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: कैब।
1: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
2: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मैं निकला घर से गड्डी लेकर, बदीनाथ जुमेरा से पहले एक डेडिकेटेड पार्किंग है, वहां पर मैंने गाड़ी पार्क की और बस लेकर गया अटेंड करने के लिए दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। द डिफ इज बैक,
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: After a 10-year hiatus, I didn't even realize that it's been 10 years since my favorite festival, Dubai International Film Festival, has not been on. But yeah, it's gonna be back from next year. That's the best news that I've heard in the past 24 hours. Anybody else who was missing the film festival here in Dubai, give me a call. Let me know 800-1062. I'll be honest, matlab. हर साल का मेरा ये एक ही इवेंट था जिसमें आई वुड टेक एक हफ्ते की लीव के भाई ठीक है मैं हफ्ते की लीव लेकर इसको अटेंड करूंगा। सो आई एम सो ओवर द मून दैट दिस फेस्टिवल इज बैक। इट वाज जस्ट लाइक द बेस्ट मोस्ट क्यूरेटेड सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स फ्रॉम यू नो द यूएस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड यू नो इंटरनेशनल सिनेमा में अगर आप यू नो शौक रखते हैं दिस इज जस्ट unbelievable. The guests were also like really high profile, the leading directors and actors from around the world coming in, so that's what you can expect. And it's an adventure yahan pe Dubai mein jab bhi koi event hum organize karte hain, it is always like you know, no holds barred. So it's just the best film festival in the world, and that is back. Anybody else who's as excited as I am, give me a call. Let me know 800-1062 par. भाई तेरा स्टार है से आंखों से तूने 2.2 कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल। दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड। गुड मॉर्निंग
1: बिग 106.2।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है. देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे.
1: बिग टाइम चेक.
2: गुड मॉर्निंग 8:07.
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: across Dubai Mall heading west towards E11. In case aapko kuch dikhta hai, if it's safe to call, call me on 800-1062.
1: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2.
3: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ, देख मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: अंगड़ाई फ्रॉम पति पत्नी और वो दो, अंगड़ाई मारते हुए अगर आप आज सुबह उठे हैं, ऑफ कोर्स यू वोकन अप टू द आईफोन डे,
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: यप, आईफोन 18 एंड आज 18 सितंबर, या इट्स गोना बी अ प्लान्ड लॉन्च राइट। आज से आईफोन 18 की सेल की शुरुआत हो गई है एंड द रिटेलर्स हैव रिपोर्टेड दैट सोल्ड आउट प्री ऑर्डर्स हो गए फॉर आईफोन 18 प्रो एंड प्रो मैक्स। वर द टॉप कलर बर्गंडी, बर्गंडी इज द टॉप कलर चॉइस एंड एज एक्सपेक्टेड द you know, demand has exceeded expectations and it's continued a pattern of premium model demand that has been seen at previous launches. Lambi lambi line Apple Store ke bahar aaj this Friday you can see, but ek model aata hai to dusra jata bhi hai. Ek taraf everybody is celebrating the first foldable phone by Apple, iPhone 18 aa gaya hai market ke andar, lekin wahi dusri taraf the iPhone 13 has now officially gone out. मतलब इट हैज़ बीन फेज्ड आउट, इट हैज़ बीन मेड रिडंडेंट, मेड डिफंक्ट। इट्स एन एंड ऑफ एन एरा। आईफोन 13, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक आईफोन्स, इज ऑफिशियली नियरिंग द एंड ऑफ इट्स प्रोडक्शन जर्नी। इसका क्या मतलब होता है यार, ये फोन तो मतलब यू कैन जस्ट कीप यूजिंग इट राइट, नहीं बट यू वोंट गेट दैट सर्विस। इसके जो पार्ट्स हैं, इसके जो सॉफ्टवेयर वगैरह, जो फोन की मरम्मत करने का अगर यू नो मौका आया तो दैट यू वोंट बी एबल टू डू, एप्पल विल नॉट डू इट फॉर यू। सो बहुत सारे साल एंजॉय किया आईफोन 13 ने ऑफ पॉपुलैरिटी एंड नाउ दैट चैप्टर इज फाइनली कमिंग टू एन एंड। यू गॉट सम फॉन्ड मेमोरीज ऑफ द आईफोन 13, इफ यू एवर ओन्ड एन आईफोन 13, सेंड मी अ व्हाट्सएप ऑन 0543091062। The Rang De Lal version of Oi Oi coming up in just a while. This is The Big Breakfast with me, Sid. Big.

0: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
3: This Navratri experience the festive souk exhibition on 26 September from 10 a.m. to 10 p.m. at Almas Conference Center, right next to DMCC Metro Station. Shop from 45 plus exhibitors featuring festive fashion, jewelry, home decor and more. Kids activities, exciting competitions, the UAE's Got Talent Season 8 Grand Finale, plus chances to win staycations and dinner vouchers. Entry and parking free. Brought to you by Kids R Us. With Divalicious Beauty Saloon, jewelry partner Biani Jewels. Event made large by Big 106.2.
4: Mini chances with big tickets.
5: 20 million dirham grand prize. 5 consolation prizes up to 1 million dirhams.
4: Plus big spin and weekly e-throws.
5: Buy now at bigticket.ae.
6: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली
8: है। कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
9: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
10: इट्स 9:15 एंड एनसीएम एक्सपेक्ट कर रहा है हाईज अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस इन दुबई एंड शारजा अराउंड 41 डिग्री सेल्सियस इन अबू धाबी एंड इंक्रीजिंग ओवरनाइट ह्यूमिडिटी एंड पॉसिबल फॉग और मिस्ट, सो ड्राइव सेफली। 34 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट 65%, विंड्स एट 8 किलोमीटर्स पर आवर, हाईज ऑफ 36, लोज ऑफ 31 डिग्रीज।
9: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: Big.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. T&C apply.
3: The Big Breakfast, brought to you by Papa John's New Pan Pizza. Enjoy 360 degrees cheese, loaded toppings and a crispy parmesan crust. Order now.
4: Remember the person you thought was a superhero as a kid? For Manoj, it was Pintu Bhaiya, the fearless local hero of early 2000s Patna. A story of childhood, friendship, love and home. Experience Patna ka superhero, starring Ghanshyam Lalsa, 26th September at The Junction. D for drama. Book your tickets now on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
3: The Big Mix. Miss kiya gaya?
5: तुम कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
6: हाय निहार।
7: हाय अपनी।
6: क्या काम करते हो आप?
7: तो आई वर्क विद अ फिनटेक, तो मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो घर से ही काम कर रही थी।
6: अब मुझे बताओ, वर्क फ्रॉम होम वाले ट्रिप पे जाके क्या माहौल बनाएंगे?
7: अब ट्रिप पे जाएंगे तो यार जितना भड़ास है जो लोगों से नहीं मिल रहे उतनी वहाँ जाके निकाल लेंगे।
6: ओके, वी गोना प्ले जीके कॉन्टेस्ट विद यू। जर्मन नॉलेज आपकी कितनी स्ट्रांग है हम चेक करते हैं। व्हाट करेंसी इज यूज्ड इन जर्मनी टुडे? ऑप्शंस आर पाउंड, यूरो और डॉलर्स।
7: यूरो।
6: अरे सोच तो लो।
7: यूरो।
6: मतलब वर्क फ्रॉम होम वाले इतने डेडिकेटेड है कि उनको आंसर से दिमाग में चढ़ा होता है, पता ही होता है।
7: इतना तो पता है।
6: Congratulations, that's actually the correct answer.
7: Thank you. और मैं तो उड़ने के लिए रेडी हूँ।
3: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
8: It is 9:26 on the clock and let's take a look sabse pehle at the capital Abu Dhabi. Halka bulka traffic milega Muzaffar Industrial and then Paprak Industrial. We're going towards Banias as usual on E11 heading north. You'll find a 3-4 minute ki there. Then there is the usual 311 E11 heading south, going towards Dubai from Sharjah. 5-7 minute ka slow moving traffic all the way till Alwarka 1. You'll find on 311 heading south. There's a bit of congestion around University of Sharjah wala area, S112 par, and this is heading west. In case you spot something, give me a call, 800-1062.
2: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. T&C apply.
3: Big 106.2.
9: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
3: Big 106.2.

0: 106.2.
1: Yes, it's time for the German knowledge contest. I've got Dheeraj with me on the phone line. Good morning, Dheeraj. Number lag gaya. Kya? Kaisa feel kar rahe ho?
2: Good morning, Sid. I'm doing good. Sach mein, aisa lag raha hai morning ban gayi.
1: तो धीरज आपके टाइमिंग क्या होते हैं काम के? Because I believe you work at the airport, huh?
2: Yes, yes. So basically, I work in shift duties, day shift, night shift, afternoon shift. So ऐसे चलता रहता है.
1: कुछ फिक्स नहीं है, मतलब ये हफ्ते का आपको शेड्यूल पहले से मिलता है, and then you got to, is that how it is?
2: Yeah, exactly. Weekend like you guys fix नहीं है, Saturday Sunday. हम लोग का कभी भी weekend fall होता है within the week.
1: So कभी भी छुट्टी, कभी Tuesday, कभी Monday.
2: Exactly, exactly.
1: So आज का क्या टाइम है?
2: आज का आफ्टरनून शिफ्ट.
1: Wow, man, I mean, how do you do it? How do you kind of manage your body clock? It is like all those people who are like Dheeraj, who are on a ad hoc alarm. भाई मतलब सलाम है आप लोगों को यार. Too good. And you're the people who kind of keep the wheels rolling, right? I mean, it's not easy to work at a place like Dubai Airport. लेकिन वहाँ पर काम करते करते कभी आपको लगा यार कि ये flight Germany जा रही है, काश मैं इस flight में बैठा होता तो.
2: बहुत बार ख्याल तो आता है बट अभी तक चांस मिला नहीं है.
1: चलो हो सकता है कि अब फाइनली आपको चांस मिल जाए. ऑल थैंक्स टू द बिग चेक इन, बिकॉज थैंक यू सो मच फॉर व्हाट्सएपिंग सबसे पहले. एंड व्हाट वी गोना डू इज प्ले द कॉन्टेस्ट दैट इज कॉल्ड जनरल नहीं जर्मन नॉलेज. तो क्या होगा, 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दूंगा एंड आई एम गोना आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन अबाउट जर्मनी. ओके, एंड अगर आपने सवाल का सही जवाब दे दिया तो आपका नाम ड्रॉ में जाएगा एंड यू गेट वन स्टेप क्लोजर ड्यूरिंग दिस ट्रिप टू जर्मनी. ऑलराइट,
2: साउंड्स गुड, ग्रेट. या
1: शुरू करें आपके 10 सेकंड.
2: श्योर श्योर.
1: ऑलराइट, द क्वेश्चन इज Which three colors make up the flag of Germany? And your options are A, black, red, gold, B, blue, white, red, or C, green, white, orange.
2: Black, red, gold.
1: Are you sure?
2: Okay.
1: Yeah. Thala laga jiya chai?
2: Yes, yes.
1: Absolutely correct. Congratulations. Officially. बाकायदा आप हो गए वन स्टेप क्लोजर टू विनिंग दिस ट्रिप टू जर्मनी. बताओ मतलब यार आप आवाज से काफी डिसओरिएंटेड लग रहे हो, लेकिन अगर एक्चुअली आप इस ट्रिप पे चले गए तो बताओ उस अलार्म क्लॉक को बंद करने का कैसा फीलिंग होगी यार? हाउ विल यू फील?
2: ऑफ कोर्स आई फील लाइक यू नो एंड दिस इज लाइक अ मच नीडेड ब्रेक वुड बी फॉर मी एंड ऐसा होता है तो सडनली लाइक आई हैव I'll have a blast of time and I'm really looking forward.
1: Uski to guarantee hamari hai yaar. When you go there, it's not just a blast that you'll have. You'll have an unforgettable trip, make some friends that'll last you for a lifetime. So that's the best part about this trip as well. So all the best, Dheeraj. Thank you so much for all the wonderful work that you're doing and for taking part in our contest. And keep your fingers crossed ki jab draw ho, aapka naam nikle. Kyunki agar aisa hua, to aap jeet jayenge a fully paid trip to Germany with Team Big. Yeah? So all the best.
2: Great. Thank you, sir.
1: Take care. That is Dheeraj. आप भी WhatsApp करते रहो धीरज की तरह. बिग चेक इन स्पेस देकर अपना नाम, उसे WhatsApp करना है आपको 0543091062 पर.
0: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग 10:09।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: डांडिया दिस नवरात्रि यू कैन एक्सपीरियंस द फेस्टिव सूक एग्जीबिशन. ये हो रहा है 26th ऑफ सितंबर यानी कि नेक्स्ट सैटरडे फ्रॉम 10 AM टू 10 PM सुबह के 10 से लेकर रात के 10. कहां पर हो रहा है? अलमास कॉन्फ्रेंस सेंटर राइट आउटसाइड GLT मेट्रो स्टेशन. यू कैन शॉप फ्रॉम 45 से भी ज्यादा एग्जीबिटर्स वो फीचरिंग फेस्टिव फैशन, साड़ीज, ज्वेलरी, होम डेकोर, फूड एंड सो मच मोर, किड्स एक्टिविटीज, एक्साइटिंग कॉम्पिटिशन. द UAE's गॉट टैलेंट सीजन 8 का ग्रैंड फिनाले एज वेल, प्लस चांसेस to win staycations and dinner vouchers, entry and parking totally free. So bhariye raat ki saans and head out there. It's brought to you by Kids R Us with Devalicious Beauty Saloon, jewelry partner Biani Jewels, event made large by Big 106.2.
1: Big 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: It is 10:39 on the clock on this 18th of September. कल से जापान में शुरू हो रहा है the Asian Games, so it's going to be a lot of fun to follow. You know, all the action out there. But every time there's something new that comes up when it comes to the Asian Games, right? So, इस बार क्या होने वाला है? There's this new sport called Virtual Taekwondo. Virtual Taekwondo is going to be introduced as a medal event, right? इसमें क्या होगा कि VR set लगाकर Taekwondo करेंगे. यानी कि there's not going to be a physical opponent against you. So, जो air guitar, फिर वो virtual dancing वगैरह जैसे होता है, वैसा that is that version of Taekwondo. So, इससे बहुत भारी एक डिबेट छिड़ गई. इवन बिफोर द एशियन गेम्स हैव स्टार्टेड, एक डिबेट हैज स्टार्टेड कि यार इज दिस अ गुड थिंग और अ बैड थिंग. नाउ पीपल हु आर फॉर इट से कि यार इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि किसी को चोट पहुंचाए बिना इफ यू कैन हैव लाइक अ मार्शल आर्ट्स कॉन्टेस्ट विच रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ स्किल बाय द वे. आई मीन यू हैव टू बी रियली एज फिट एज अ रियल टाइक्वांडो का प्लेयर. सो इफ दैट इज द केस तो तुमको क्या प्रॉब्लम है यार. बट दूसरा हिस्सा जो है दुनिया का वो ये कह रहा है कि वॉट इज कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है. वॉट इज द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट इफ यू नॉट गोइंग टू मेक कॉन्टैक्ट विद एनीबडी. आपको क्या लगता है इसके बारे में यार? वर्चुअल टाइक्वांडो शुड बी देयर, आर यू फॉर इट अगेंस्ट इट? आई हैव ऑलरेडी पुट अप अ पोल क्वेश्चन ऑन आवर इंस्टा 106.2 बिग एफएम. वर्चुअल टाइक्वांडो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप कौन से ट्रैफिक से करोगे तौबा, मॉर्निंग या फिर इवनिंग? ये था कल का पोल क्वेश्चन एंड इट्स टाइम फॉर द रिजल्ट्स. 60% इन फेवर ऑफ इवनिंग ट्रैफिक कह रहे हैं कि अगर हमें चॉइस दी जाए तो वी डेफिनेटली प्रेफर टू गेट स्टक इन इवनिंग ट्रैफिक रादर देन मॉर्निंग ट्रैफिक, बिकॉज इवनिंग में क्या है ना, दिस नो डेडलाइन, नो टाइम लिमिट, नो मीटिंग टू हेड टू. घर ही तो जाना है यार.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज, अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।
3: बिग 106.2

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: Big 106.2. That's my song.

0: song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अलगिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
4: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
5: दो या चार?
4: चार।
5: कब तक वापस लड़ेगा?
4: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
5: चार या
4: पाँच?
6: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, miss kiya gaya?
1: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
2: हाय निहार।
3: हाय अपनी।
2: क्या काम करते हो आप?
3: तो आई वर्क विद फिनटेक, तो मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो घर से ही काम कर रही थी।
2: अब मुझे बताओ, वर्क फ्रॉम होम वाले ट्रिप पे जाके क्या माहौल बनाएंगे?
3: अब ट्रिप पे जाएंगे तो यार जितना भड़ास है जो लोगों से नहीं मिल रहा उतनी वहाँ जाके निकाल लेंगे।
2: ओके, वी गोना प्ले जीके कॉन्टेस्ट विद यू। जर्मन नॉलेज आपकी कितनी स्ट्रांग है हम चेक करते हैं। व्हाट करेंसी इज यूज्ड इन जर्मनी टुडे? ऑप्शंस आर पाउंड, यूरो और डॉलर्स।
3: यूरो।
2: अरे सोच तो लो।
3: यूरो।
2: मतलब वर्क फ्रॉम होम वाले इतने डेडिकेटेड हैं कि उनको आंसर से दिमाग में चढ़ा होता है, पता ही होता है।
3: इतना तो पता है।
2: Congratulations, that's actually the correct answer.
3: Thank you. और मैं तो उड़ने के लिए ready हूँ।
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 PM. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

0: आपने बहुत अच्छा शॉट दिया।
1: थैंक यू। मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब जैसा है।
0: ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, पर ये

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 1:06
1: 6.2 The Beat of Bollywood

0: Anyone can sell insurance when everything's fine. What matters is who shows up when it isn't. InsuranceMarket.ae. Here when it matters. Call 800-ALFRED.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. It's Friday, it's a movie day and आज फिल्म रिलीज हुई है दायरा इन थिएटर्स. अगर अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है, let's watch it together.
3: ये तीसरी बार है ना आप और डीसीपी रमन कुमार ने इससे पहले भी exactly same situation फेस की है.
4: एक्यूज ने मौका ढूंढा और एस्केप करने की कोशिश की.
3: क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान
4: उन्होंने हमारे टीम पर अटैक किया
3: और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में मार दिया.
2: आवाज पहचान चुके होंगे, इट्स करीना कपूर खान. मिस्ट्री वाली फिल्म है ये, क्राइम थ्रिलर है, लेकिन सबसे बड़ी बात दिस इज मेड बाय मेघना गुलजार, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर दी हैं हमें, विच इज राजी, देन तलवार, सैम बहादुर, एंड ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट अगेन इट्स डार्क, इट्स अ क्राइम थ्रिलर. एंड ट्रेलर देखने के बाद बता सकती हैं इट्स अ वन टाइम वॉच, क्योंकि क्लाइमैक्स में पता लग जाएगा, मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी, बट द एक्सपीरियंस यू गेट व्हेन यू गो ऑन टू दैट थिएटर दैट इज डिफरेंट. आज देख सकते हो, वीकेंड है तब देख सकते हो, लेकिन जस्ट नॉट दैट, इट्स नॉट दायरा ओनली, मोर फिल्म्स आर अवेलेबल टू वॉच इन सिनेमाज दिस वीकेंड. व्हाट आर दोज, बताती हूँ इन अ बिट.
5: मुझको गलत तुझ में अगर कुछ है,
2: क्या गलत है यार,
5: तुझ में असर कुछ.
2: रोज मूवी देखना चाहती हूँ, उसमें क्या गलत बात है, जरा मुझे बताओ आप. सिनेमा हॉल्स में कौन कौन सी फिल्म्स अवेलेबल हैं दिस वीकेंड देखने के लिए, गोना टेल यू इन अ बिट. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2. तुमसे ट्रैक फ्रॉम तेरी बातों में उलझा जिया, कमिंग योर

0: कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: टू बेस्ट फ्रेंड्स, वन डेंजरस मिशन एंड chaos दे नेवर saw कमिंग।
3: तुम दोनों हमारे लिए इंटेल कलेक्ट करोगे और इस मिशन का हिस्सा बनोगे।
2: Get ready for Vibe, starring Kunal Kemmu, Preeti Zinta and Sparsh Srivastava. Directed by Kunal Kemmu.
4: This is the Vibe.
5: Lord, please, mujhe bacha le.
6: Lord, please, mujhe bacha le. Nastik se aastik ban gaye.
2: Vibe, releasing 18th September. Distributed by Al Nasser Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.
1: Listen to her every day.
0: Mugembo, khush hua.
3: Three things that are white in color and you can eat.
7: खीर, दही, दूध।
3: वेरी नाइस। मतलब किचन में जाते हो आप, बीवी की हेल्प कराते हो आप?
7: हाँ हाँ, बनाता हूँ, जब जब बनाता हूँ मैं।
3: हाँ, बना तो नहीं रहे हो ना मुझे फिलहाल। तीन ऐसी आपकी आदतें जो वाइफ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं।
7: वॉचिंग क्रिकेट ओवर द फोन एवरी टाइम।
3: ओए, टाइम खत्म। थ्री रोमांटिक निकनेम्स जो आपने अपनी डार्लिंग वाइफ को दिए हैं।
7: डम्बो, जानू, शोना।
3: ओए, सो क्यूट। तो करते हो क्या, मेरे शुना ने खाना खाया, मेरा शुना गुस्सा है?
7: नहीं नहीं, मैं ज्यादातर डम्बो बुलाता हूँ।
3: वेरी नाइस। वो आपको क्या बुलाती
7: है? वो है नहीं, वो नाम से, वो भी ऐसे कुछ डफर बुलाती।
3: वेरी क्यूट, आई लव दीज निकनेम्स। तीन झूठ जो आप बीवी से बोलते हो दोस्तों से मिलने के लिए।
7: आज हम लोग कहीं
3: टाइम खत्म हो गया। नॉट बैड।
1: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: Shrek Zalth Road par aapko slower patches milenge around Marina and Albarsha and there's traffic around Alkasis on E311 and E11 towards Sharjah. Agar aap Media City, Marina ya fir Albarsha wali side ja rahe ho tab bhi aapko traffic mil sakta hai. Kahin aur phase ho, let me know, call karke 800-1062 par.
2: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
9: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड आज है फ्राइडे, इट्स अ मूवी डे एंड आज फिल्म रिलीज हुई है एक और विच इज कॉल्ड वाइब और ट्रेलर देख के आप समझ जाओगे इसका नाम वाइब क्यों है।
3: MBA हूँ।
4: MBA कहाँ से किया?
3: किसने?
4: You just said मैं MBA हूँ।
3: वो तो शॉर्ट फॉर्म है, मतलब मैं बिल्कुल अकेला हूँ।
2: कुणाल खेमू की मूवी है, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय हिम, इनफैक्ट डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हैं।
5: स्ट्रॉन्ग मैन, इट्स अबू अल सईद।
6: एज, यूज एनी डिपार्टमेंट बट रिजल्ट्स एट एनी कॉस्ट,
5: वी आर ऑन इट।
2: एंड दैट्स प्रीति ज़िंटा, दो बेस्ट फ्रेंड्स, दो भाई, दोनों तबाही। लेकिन होता ना यार कि कहीं पर हंसी निकल जाती है ऐसी जगहों पर जहां पर नहीं हंसना चाहिए। वेल, इन दोनों की लाइफ में भी यही हो रहा है। कुणाल खेमू एंड स्पर्श श्रीवास्तव, उन्होंने भाई भाई का रोल निभाया है, उसके बावजूद वो एक गलत जगह पर चले जाते हैं और जो फिर जिंदगी में शुरू होता है, दैट्स गोना बी अ कॉमेडी राइड फॉर ऑल ऑफ अस। लाफ राइड यार, एक तो पूरा दिन, पूरा वीक जो है हम काम करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद एक अच्छी कॉमेडी फिल्म तो हम भी डिजर्व करते हैं यार।
3: मेरा तो बहुत अजीब लगूंगा।
7: वायर मतलब माइक पहन के जाना है।
8: इलेक्ट्रिकल वायर में क्यों लपेट के भेजेंगे तुम्हें?
2: From the filmmakers of Madgaon Express, अगर आपने वो देखी है तो expect कर सकते हो वही roller coaster ride of emotions, laugh and reviews अच्छे आ रहे हैं कि कुणाल खेमू का काम बहुत अच्छा है। So vibe is gonna be a film जो आपको अच्छी खासी vibe में जरूर लेके जाएगी।

रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस, लाफ एंड रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं कि कुणाल खेमू का काम बहुत अच्छा है. सो वाइब इज गोना बी अ फिल्म जो आपको अच्छी खासी वाइब में जरूर लेके जाएगी. मोर फिल्म्स कमिंग योर वे, अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. इट्स फ्राइडे, लेकिन ये वाले कपल की फिल्म आज रिलीज नहीं हो रही है. रिलीज होगी अगले साल मिड ईयर तक, लेकिन दिस इज अ फ्रेश कपल जो बॉलीवुड में नया बनने वाला है. इज गोइंग टू बी अ फीचर फिल्म डेब्यूटेंट फॉर अमरीश वर्मा. उनका जो कैरेक्टर है आपको याद होगा फ्रॉम द सीरीज सपने वर्सेज एवरीवन. भाई क्या बढ़िया ब्रेन रॉट सीरीज है. एंड ऑनेस्टली अमरीश वर्मा का जो कैरेक्टर है उस सीरीज में, इट्स वेरी रिलेटेबल स्पेशली टू रियल एस्टेट पीपल, क्योंकि उनकी भी साइड गिग है रियल एस्टेट एंड बहुत सारे हैक्स बताते हैं, विच इज़ यू नो वेरी स्ट्रीट स्मार्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड सीजन टू मैंने देखा था, रिसेंटली आया था, लेकिन सीजन वन भी मैंने नहीं देखा है. बट द कैरेक्टर, द स्वैग, ओ गॉड, दैट्स हैट्स ऑफ. लेकिन उनकी पेयरिंग होने वाली है अब धुरंधर फेम सारा अर्जुन के साथ. हम भी थक गए हैं, हमें भी नए एक्टर्स चाहिए. वैसे भी नए एक्टर्स का सीजन चल रहा है एंड दिस इज अ फ्रेश फ्रेश फ्रेश एकदम अवन से निकली न्यू पेयरिंग. लेट्स सी हाउ द फिल्म गोज. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2. कमिंग अप नेक्स्ट इज फॉर यू बिग चेक इन टू जर्मनी. कीप इट लॉक्ड.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:05।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: That sound changes everything. When something goes wrong, insurancemarket.ae is there for your claim. Great car insurance, great support. Call 800-ALFRED.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस इज बिग चेक इन टू जर्मनी. आज लास्ट डेट है टू रजिस्टर योर नेम फॉर दिस कैंपेन फॉर दिस ऑल एक्सपेंस पे ट्रिप. आपको करना है टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम और भेजना है इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062. मैं करूंगी आपको कॉल एंड खेलेंगे हम एक जीके का सवाल. नॉट द जनरल नॉलेज बट द जर्मन नॉलेज. आज आखिरी दिन है टू रजिस्टर योर नेम, सो कर लो भाई. वॉट अभी थोड़ा सा और वक्त बचा है मेरे शो के बाद भी. अगर नहीं आता है कॉल देन द बिग थ्रिल इट इज मूव योर बॉडी. फोन उठाओ, मैसेज करो बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड भेजो इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062. लास्ट कॉल फॉर बिग चेक इन टू जर्मनी.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood. High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The big check-in to Germany, only on Big 106.2.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडिल ईस्ट।
5: लगता तो ऐसे यार कि बर्फ पड़ने वाली है जब भी हम इंडोर्स होते हैं, कहीं भी एसी वाले जगह पर होते हैं, लेकिन बाहर जाते ही जब वो एक्सेसिव हीट हिट करती है, 37 डिग्रीज एज ऑफ नाउ, बट इट फील्स लाइक 45 विद ह्यूमिड लेवल्स 51%.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 054-309-1062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
6: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
2: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2.
3: The Beat of Bollywood.
4: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस इज द लास्ट कॉल फॉर बिग चेक इन टू जर्मनी और आज मैंने कॉल किया है मानसी को. हाय मानसी.
5: हाय अवनी.
4: हाउ आर यू?
5: आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग.
4: कैसा लग रहा है कि फाइनली आपका नंबर आ गया? चलो आखिरी में आया है.
5: वेरी एक्साइटेड. वेरी एक्साइटेड.
4: अच्छा अच्छा, आपको किस्मत पे भरोसा है ऐसा कि यार मेरा नंबर पहले तो कभी नहीं आता, सेकंड आता है या तो हमेशा लास्ट आता है?
5: 100% आएगा आएगा.
4: क्या करते हो आप मानसी?
5: आई एम वर्किंग एज अ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एनालिस्ट.
4: ओ वाओ, ये तो बहुत ही लंबा नाम हो गया यार, ये तो थोड़ा समझने में मुझे देर लगेगी. एग्जैक्टली क्या करते हो आप?
5: So it's kind of building strategies for business to transform and bringing new technologies and all.
4: तो फिर जर्मनी जाके आप कौन सी स्ट्रैटेजी बनाने वाले हो अपनी ट्रिप की?
5: वहाँ तो मुझे सिर्फ रिलैक्स होना है और कुछ नहीं. स्ट्रैटेजी.
4: That's the actual definition of vacation. Okay, हम शुरू करते हैं. मैं आपसे एक जीके का क्वेश्चन पूछूंगी. इट्स अ जर्मन क्वेश्चन. आपको बताना है सही जवाब. ओके, सो विच फेमस जर्मन कैसल लुक्स लाइक अ फेरी टेल पैलेस एंड इंस्पायर्ड बाय डिज्नीज कैसल? ऑप्शन ए इज नॉयश्वानश्टाइन कैसल, बी इज लंदन टावर, सी इज विंसर कैसल. ए इज नॉयश्वानश्टाइन कैसल, बी इज लंदन टावर, सी इज विंसर कैसल.
5: नॉट टू श्योर बट मे बी लंदन कैसल.
4: लंदन कैसल जर्मनी में. ओके, डू यू वॉन्ट मी टू टेक दिस?
5: आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट गेसिंग.
4: गेस मोर प्लीज.

0: Castle?
1: Not too sure, but maybe London Castle.
0: London Castle, Germany. Mein. Okay. Do you want me to take this?
1: I'm not sure. I'm just guessing.
0: Guess more, please. मानसी वही वाला है जो जिसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है ना. क्या क्या सोचा था आपने? कौन सा
1: विंटर कैसल?
0: सारे सारे गलत आंसर पहले मानसी दीजिए. सारे गलत आंसर. ये आपके लिए जो सही आंसर है. इनका लास्ट कॉल भी मानसी को लगा है. लास्ट सही आंसर भी मानसी ने बताया है कि मैं तीनों ऑप्शंस बोलूंगी. इन थर्ड वाला करेक्ट है. वाह, इतनी अच्छी जीके के बाद, जर्मन नॉलेज के बाद आपको जाना है जर्मनी.
1: मैं वहां जाके ब्रश अप कर लूंगी अच्छे से.
0: नहीं, तब भी आपका नाम आज रजिस्टर हो चुका है फॉर बिग चेक इन टू जर्मनी. लेट्स सी आप जर्मनी जाते हो या नहीं.
1: थैंक यू सो मच, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई जस्ट यू कॉल्ड मी.
0: ओके, थैंक यू सो मच, बाय.
1: थैंक यू अवनिया, बाय.
0: देयर इज वन लास्ट कॉल फॉर बिग चेक इन टू जर्मनी शाम के शो में. वहां तक और मैसेजेस भेजते रहो 0543091062 पर. टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम और आप भी चल सकते हो हमारे साथ बिग चेक इन टू जर्मनी.
2: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: क्या तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड कमिंग आवर में आप जीत सकते हो ओपन मूवी टिकट. इट्स फ्राइडे, ऑफ कोर्स किसको नहीं जाना है यार मूवी के लिए, लेकिन उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, खाने की बातें करनी है यार मेरे साथ.
2: जीदाना मोहब्बत गुम है, गुम है.
1: ऐसी होती हूँ मैं गुम, ब्रेकफास्ट लंच इवनिंग स्नैक डिनर के टाइम पर. मुझे आप सिर्फ मेरी थाली के साथ ही मिलोगे. वी गोना प्ले खाओ पियो ऐश करो विद यू इन द नेक्स्ट आवर एंड आप जीत सकते हो ओपन मूवी टिकट. सो कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:07।
2: Bollywood.

0: हरमीत कौर का ट्रैक सॉन्ग का नाम था इश्क नचावे, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक। लेकिन उसके साथ साथ इश्क नहीं भाई, अभी तो फिलहाल वीकेंड चल रहा है, तो वीकेंड के प्लान्स नचा रहे हैं।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनि आपके साथ। अगर अभी तक आपका वीकेंड का प्लान नहीं बना है, मैं बना देती हूँ। बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज रिलीज हो रही हैं। वी आर गिविंग अप ओपन मूवी टिकट्स, एंड अगर आपको ये जीतना है, कॉल करना है मुझे 800-1062 पर। मैं खेलूंगी आपके साथ द 3 PM पीक लंच आवर टाइम गेम। इट्स अ रैपिड फायर बिटवीन टू फूड डिशेस। तो आपको कॉल करना है 800-1062 पे। मैं ये गेम खेलूंगी आपके साथ, जो भी फटाफट जल्द से जल्द आंसर देगा वो जीतेगा ये गेम। 800-1062 इट इज, एंड यू कैन गेट अ चांस टू विन ओपन मूवी टिकट्स। 800-1062, अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: two best friends, one dangerous mission, and chaos they never saw coming.
1: तुम दोनों हमारे लिए इंटेल कलेक्ट करोगे और इस मिशन का हिस्सा बनोगे.
0: Get ready for Vibe, starring Kunal Kemmu, Preeti Zinta, and Sparsh Srivastava. Directed by Kunal Kemmu. This is
2: the Vibe. Oh God, please, मुझे बचा ले. नास्तिक से आस्तिक बन गए.
0: Vibe, releasing 18 September. Distributed by Al Nisser Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.
3: Get ready to laugh till your stomach hurts. The best comedy is hitting the stage, and these two old legends are about to drag each other down life. Purane Chawal, starring Kumud Mishra and Shubhrajyoti Bharat, directed by Sumit Vyas. Catch this seasoned comedy on 26th and 27th September at The Junction. D for Drama. Book your tickets on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
4: Listen to her every day.
5: Mugembo! Khush hua!
6: Three things that are white in color and you can eat.
7: Kheer, dahi, doodh.
6: Very nice. मतलब किचन में जाते हो आप, बीवी की हेल्प कराते हो आप.
7: हाँ हाँ बनाता हूँ, जब जब बनाता हूँ मैं.
6: हाँ बना तो नहीं रहे हो ना मुझे. फिलहाल तीन ऐसी आपकी आदतें जो वाइफ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं.
7: Watching cricket over the phone every time.
6: Oye, oye, time khatam. Three romantic nicknames jo aapne apni darling wife ko diye hain.
7: Dumbo, Janu, Shona.
6: Oh, so cute. तो करते हो क्या, मेरे शोना ने खाना खाया, मेरा शोना गुस्सा है?
7: नहीं नहीं, मैं ज्यादातर डम्बो बुलाता हूँ.
6: वेरी नाइस. वो आपको क्या बुलाती
7: है? वो है नहीं, वो नाम सिर्फ, वो भी ऐसे कुछ डफर बुलाती.
6: वेरी क्यूट. आई लव दीज निकनेम्स. तीन झूठ जो आप बीवी से बोलते हो दोस्तों से मिलने के लिए.
7: आज हम लोग कहीं लंच पे जा
6: रहे हैं. टाइम खत्म हो गया. नॉट बैड बट
8: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
9: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है.
10: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ.
8: You are listening to The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
12: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
8: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
13: जैसे जैसे शाम पास आती है वैसे वैसे humidity levels बढ़ते जाते हैं. Still it's 37 degrees out there the temperature, लेकिन humid levels अभी भी 54% पर हैं.
8: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. It's the time we play खाओ पियो ऐश करो.
2: खाओ पियो ऐश करो मित्रो.
1: Let's see आज कौन है कॉल पे. हेलो.
3: हाय.
1: हाय, क्या नाम है आपका?
3: नितिन.
1: नितिन, ओके नितिन, आपने लंच कर लिया है क्या?
3: मैंने लंच किया.
1: What did you have for lunch?
3: I had vegetable biryani.
1: Thank God. I got someone जो बिरयानी के आगे वेजिटेबल लगा सकता है. I'm a vegetarian and whenever I say I had vegetarian biryani, people just mock me.
3: I don't call pulav. I call the pure vegetable dum biryani.
1: Thank you so much for saying that. And since आज weekend है, शुरुआत हो चुकी है, so I'm gonna give you snacks. Okay. So good. What would you choose, Nitin?
3: I would go for main of falafel, then along with French fries.
1: Let me give the options first. भाई वाह वाह, यू सच अ ग्रेट फूडी. आपने अपनी लिस्ट बतानी खुद ही शुरू कर दी है. ओके, व्हाट वुड यू हैव? हनी चिली पोटैटो और चिली पनीर.
3: चिली पनीर.
1: ओके, वेज मोमोज और चिली पनीर.
3: वेज मोमोज.
1: वेज मोमोज और गोल गप्पे.
3: वेज मोमोज.
1: ओके, वेज मोमोज या पनीर पकौड़ा.
3: वेज मोमोज.
1: वेज मोमोज या आलू चाट.
3: आलू चाट.
1: ओके, आलू चाट या वेज मंचूरियन.
3: वेज आलू चाट.
1: ओके, आलू चाट या व्हाइट सॉस पास्ता.
3: आलू चाट.
1: आलू चाट या बेक्ड पास्ता. So what are your plans for weekend?
3: My plans is I have planned for a movie with my family. Then alongside my, my little one is turning one and I have some birthday preparation to happen. So I'll be running behind that.
1: Have you already booked for the movie?
3: I have not yet. I'm planning.
1: Well, your plan is successful now. You win open movie tickets. Thank you so much, Nitin.
3: My pleasure. Thank you. Thanks a lot.
1: The moment Nitin said vegetable biryani, I was sold. Khao pi aish karo, legit khane ki baat karo and aish karo with the movie tickets. If you want to play 800-106

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। फ्राइडे मूवी डे है, लेकिन अगर आपका मन नहीं है बाहर जाके कोई भी फिल्म देखने का, आई ऑलवेज रीविजिट फिल्म्स जो मैं ओटीटी पे देख सकती हूँ। एंड वन ऑफ द फिल्म इज अमर सिंह चमकीला। क्या ब्यूटिफुल कहानी है, पहली बात तो इंस्पायर्ड है रियल लाइफ कैरेक्टर से, दूसरी बात क्या गाने हैं, व्हाट अ म्यूजिकल जर्नी।
2: इश्क मिटाए हाय हाय, निमाए मेरा इश्क बनाए हाय हाय।
1: मोहित चौहान, ए आर रहमान, रिशाद कामिल, ये जो ट्रायो है ना, एंड एक्चुअली फ्रायो आई वुड से, इम्तियाज अली, दिलजीत दोसांझ, यार दिलजीत दोसांझ एंड परिणीति ने उनमें लाइव गाने गाए हैं। एंड क्योंकि मैं पंजाब की हूँ, अमर सिंह चमकीला के बारे में बचपन से मैंने पढ़ा है, टू वॉच दैट इन अ फिल्म एंड ऊपर से इतने सुंदर गानों के साथ, लाइव परफॉर्मेंसेस के साथ, इस पूरी की पूरी मूवी की ना वाइब ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी, इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, डू वॉच इट। अमर सिंह चमकीला, इश्क मिटाए, सॉन्ग कमिंग अप योर वे आफ्टर दिस वन। अंटिल देन, कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 4:05। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: इवनिंग ह्यूमिडिटी हैज स्टार्टेड, इट्स ऑन 60% विद 37 डिग्रीज टेम्परेचर।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ. कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे. आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं. हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो.
0: The Big Mix with Avni on Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: करण औजला का ट्रैक सॉन्ग का नाम द बॉयफ्रेंड. लेकिन अगर आपका भी बॉयफ्रेंड ही बना हुआ है ना आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम टेलिंग यू यू नीड अ बेटर वन.
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: बिग 106.2 पे मैं हूं अवनी आपके साथ एंड यू नीड अ बेटर वन इज द फाइनेंशियल एडवाइजर. वो उससे मेरा मतलब था. अब यार आप एक इंसान पे इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपेक्टेशंस नहीं डाल सकते हो ना. If you're looking for a credit card, personal loan या फिर mortgage, start with creditmarket.ae. That's one more way Alfred can help you. कुछ नहीं करना है, बस कॉल करना है 800-ALFRED पर या फिर आप विजिट कर सकते हो creditmarket.ae पर. और बेचारे पे थोड़ी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम करो यार. बाकी सब कुछ घूमो फिरो ऐश करो, लेकिन इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान पे थोड़ा ज़्यादा है. नहीं दीदार दे होने वाला है. असीस कौर का ट्रैक दीदार दे. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood. The Big Jill.
2: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
5: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
1: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड नेटफ्लिक्स पर आज एक एंथोलॉजी सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है लव स्टोरीज. पार्ट 3 रिलीज हुआ है एंड जितना मैं देख चुकी हूँ पार्ट 1 पार्ट 2, आई थिंक सो मुझे सिर्फ पहला पार्ट ही अच्छा लगा था. बट विद द कास्ट दे हैव गॉट ऑन लाइक द सीक्वल पार्ट 3, दैट्स एक्चुअली अमेजिंग. और इसीलिए मुझे इससे काफी एक्सपेक्टेशन है. गोना बिंज वॉच दिस वन. दे हैव राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, विजय वर्मा, अभिषेक बैनर्जी, अली फजल, राधिका मदान, आदित्य राव हैदरी एंड सिद्धार्थ, हर रियल लाइफ हस्बैंड एज वेल. इसीलिए एक्सपेक्टेशन मेरी हाई हो गई हैं एंड जोर से ना इसे मुझे बिंज वॉच करने का मन आ रहा है. There's one more thing coming your way and that is self-drive ka ye flat rate for the year. Get school ready with self-drive today. Rent a car starting from 1099 dirham per month. This is the flat rate for the year and it has zero penalty on early returns. So basically, aapki school tak ki ride ab aur bhi smooth ho jayegi with self-drive. RERE track from Dhurandhar coming your way. Keep it locked to Big 106.2.

0: तुम बीमार हो?
1: नो।
0: तो लेती क्यों?
1: मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं।
0: कैसे हैं सेंसेशंस?
1: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, दूध को दहाड़, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, टपक पहाड़, धरवराहट, थरथराहट, टपक पहाड़, धरवराहट, टपक पहाड़, झटपटाहट, फटफड़ाहट, सुबुगाहट, गुलाहट, गुदाई, शिमलाई।
2: बिग

0: Life, travels, or business. Over 30,000 Google reviews and even a metro station named after us. Call 800-ALFRED.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, जिसका फिलहाल हो रहे जाने का टाइम, पर आपको पता है ना, मैं हमेशा रहती हूँ इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन. ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो दिस इंस्टा हैंडल 106.2 बिग FM, या फिर आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो अवनी यार के पेज पर, AVNIY AAA R. फिलहाल जा रही हूँ, लेकिन मिलती हूँ संडे को फिर से द बिग रिकमेंड्स के साथ. एंड फॉर नाउ, टॉप नॉच ट्रैक्स कमिंग योर वे. और उससे पहले वीकेंड वाइब्स फुल आनी चाहिए यार. हैवी वीकेंड, कीप इट लॉक टू बिग 106.2.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, ये है Big Thrill Mansi. Friday की शाम है, mood अच्छा है ही. Plus the festive season is here while you're heading back home. All set to keep you company here until 9. And romantic गाना मैंने आप मुझे सुनाते हैं 5 से 6. One thing that I absolutely love is karaoke. And हम ये करते हैं हर शाम. गाड़ी में बैठे बैठे आप अपना concert host कर सकते हैं exclusively for bathroom singers. अगर आप गाने का शौक रखते हैं, I या ना I doesn't matter. अगर दिल का दर्द कानों तक ना पहुंचे तो आप यहाँ गा सकते हैं. We're starting the karaoke in just a bit. फिलहाल kick starting the show with

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:06।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
3: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
2: अलरास बोले तो?
3: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा सज्जा देरा रसल खोर अलकूस गुसेस अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
2: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
4: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetro T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. T&C apply.
5: This Navratri, experience the festive souk exhibition on 26 September from 10 a.m. to 10 p.m. at Almas Conference Center, right next to DMCC Metro Station. Shop from 45 plus exhibitors featuring festive fashion, jewelry, home decor and more. Kids activities, exciting competitions, the UAE's Got Talent Season 8 Grand Finale, plus chances to win staycations and dinner vouchers. Entry and parking free. Brought to you by Kids R Us. With Divalicious Beauty Saloon, jewelry partner Biani Jewels. Event made last
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
0: 37 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 31 फिलहाल, ह्यूमिडिटी 56% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2। बिग 106.2।

0: if insurance gave you more than insurance? Buy anything from insurancemarket.ae and get My Alfred Premium free for 1 year. Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: फ्राइडे की शाम है, वीकेंड का माहौल है. मैं हमेशा कहती हूँ फ्राइडे इवनिंग्स आर सो मच बेटर देन सैटरडे इवनिंग्स, बिकॉज देन संडे तो यही सोच में निकल जाता है कि मंडे को फिर से ऑफिस जाना है. लेट्स नॉट थिंक अबाउट वर्क राइट नाउ, लेट्स थिंक अबाउट द वीकेंड एंड व्हाइल यू आर हेडिंग बैक होम. एवरी सिंगल इवनिंग हम यहाँ पे माहौल बनाते हैं, गाने गाते हैं. आई थिंक गाना गाना इज द बेस्ट वे टू अनवाइंड एंड डी स्ट्रेस.
1: Karaoke.
2: So if you love singing, even if you're not a singer, then this is it. Exclusive platform for bathroom singers. Sur lage, na lage. Agar aapka dil lagta hai, to bas ye gana jo hai, bada popular hai again from the 90s. And I remember, I'm from a very small town. Aaj bhi when I go to my tailor bhaiya there, yehi gaane play hote hain.

1994 का गाना है, अगर आपको याद आ गया। थोड़ा सा टफ है, बट जिन्होंने 90s में ये गाने बार बार लगातार सुने उनके लिए टफ नहीं होगा। इफ यू गेस द सॉन्ग, यू नो द सॉन्ग, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर। इट्स टाइम फॉर द करियोकी।

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, फ्राइडे की शाम है, वीकेंड वाला माहौल है एंड हम यहाँ पे माहौल बनाते हैं एवरी सिंगल इवनिंग, वीकडे हो या वीकेंड, विद द कैरियोकी. गाना आया ना आए, अगर गाना पसंद है गाना, देन दिस इज इट. एंड जॉइनिंग अस इज अनुपम. हाय
2: हाय हाय, गुड इवनिंग.
1: आई एम, अच्छा आपने गुड इवनिंग बोला, मुझे लगा ये डिफॉल्ट होता ना. हाउ आर यू? गुड इवनिंग. गुड इवनिंग अनुपम.
2: हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू.
1: कैसा रहा आपका ये हफ्ता?
2: हफ्ता अच्छा था. आई एम ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम दुबई, अबू धाबी टू दुबई. सो यस.
1: ओ, यू डू दैट एवरी इवनिंग?
2: नो नो, जस्ट ऑन द वीकेंड.
1: सो यू स्टे इन अबू धाबी बट यू वर्क इन दुबई?
2: नो, एक्चुअली आई वर्क इन दुबई. आई ट्रैवल टू अबू धाबी ओवर द वीकेंड टू सी सम वर्क एट वन ऑफ आवर अबू धाबी ऑफिस.
1: सो द फेस्टिव सीजन इज हियर. जा रहे हो गणपति देखने, दर्शन करने?
2: हाँ, have been to एक दो places पर जा चुके हैं, तो yes.
1: Very nice.
2: Festive vibes हैं.
1: Of course. Do you enjoy singing, Anupam?
2: Yeah, थोड़ा बहुत मैम, not great way.
1: लोगों ने कभी तारीफ की है आपके गाने की?
2: हाँ, थोड़ा बहुत, मतलब कभी कभी की है.
1: और बाकी टाइम?
2: बाकी टाइम तो शायद क्रिटिसाइज भी करता हूँ.
1: अरे, चलो अब हम सुनते हैं अनुपम की आवाज में. अब दिल का दर्द दिल तक पहुँचता है या कानों तक, ये तो सुनने के बाद पता चलेगा. हाँ जी.
2: कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें,

0: तुझ फुर्सत में बनाया होगा तुझे रब ने मेरे यार,
1: कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। गाया तो बड़ा अच्छा है अनुपम। तो कितने हसीन चेहरों के लिए आपने ये गाना गाया है?
0: एक ही के लिए गाया मैम, आई एम मैरिड फॉर लास्ट 15 इयर्स। सो
1: यू डोंट साउंड लाइक यू आर मैरिड फॉर लास्ट 15 इयर्स, यू साउंड वेरी वेरी हैप्पी।
0: I am married.
1: Touch wood. Any memories with this song?
0: I used to listen to 90s songs, so अच्छे लगते हैं सुनने, mild होते हैं सुनने में। तो
1: मतलब 90s के गानों की बात अलग है, you can't compare them to any era.
0: That is right.
1: गाया है कभी आपने अपनी wife के लिए गाना?
0: हाँ, वाइफ के लिए मैं गाने गाता रहता हूँ।
1: So sweet.
0: Whenever she feels like.
1: So sweet. Green flag, अनुपम, बड़ा अच्छा गाया आपने। Have a safe drive and enjoy your weekend.
0: Great talking to you. Thank you.
1: Bye. यही है karaoke, जब आप घर जाते हैं, while you're in the traffic, हम यहाँ पे गुनगुनाते हैं, माहौल बनाते हैं। If you love this song and you'd like to sing, give me a call 800-1062-PAR.
2: Beat 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Weekend feels hai while you're out and about, probably heading home. Hum yahan pe jam kar rahe hain. We are karaokeing and joining us is Altaf. Hi, Altaf.
2: Hello, hello.
1: I am and I'll forever be a fan of guess who?
2: Altaf Raja.
1: Bilkul. Pehle to kabhi kabhi gum tha. आप भी उन्हीं की तरह सुर में गाते हैं?
2: सब लोग कॉलेज में तो अल्ताफ राजा ही बुलाते थे, तो
1: अरे
2: गुड मेमोरी.
1: We will play you the track, and I would love to listen to Mr. Altaf this evening. It's time for the karaoke.
0: Karaoke.
1: Hanji.
2: Kitna haseen chehra, kitni pyari aankhein. इतनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार, कुदरत से बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार.
1: बहुत ही कमाल यार, keep singing, it's amazing.
2: एक्चुअली म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा है, वरना और अच्छा गा लेते.
1: अरे ये देखो, यहाँ है प्रोफेशनल. गाया तो बहुत कमाल है सर.
2: Thank you.
1: मजा आ गया. So I'm sure you do this often, especially parties में.
2: Yes, I do.
1: So any particular girl you remember from college जिसे देखते ही कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें?
2: जैसे पहले वाले सज्जन ने बोला, मेरी भी 13 साल से शादी हो चुकी है, तो अभी तो सिर्फ बीवी को ही याद करते हैं.
1: नहीं, अभी की नहीं, मैं तभी की बात कर रही हूँ.
2: तभी तो बहुत थी आशिकी.
1: तो किसी ने रेसिप्रोकेट की थी आशिकी की, बस एक तरफा रह गई?
2: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी जिंदगी रही है अब तक की.
1: ओहो, रंगीन. बहुत जगह था, बहुत मजा आया. यू हैव अ फैंटास्टिक इवनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग.
2: यू टू, थैंक यू फॉर पिकिंग द कॉल.
1: बाय. दिस इज व्हाट वी डू एवरी सिंगल इवनिंग. अगर आप भी गाने का शौक रखते हैं तो बस मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. कैरियो की योर नेम टू 0543091062.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun.
1: Come on, come on.
0: Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
2: Good evening, this is the Big Thrill of Mansi, and today also happens to be Greeting Card Day. If you're a fellow millennial, you know greeting cards are a part of our core childhood and teenage memories. As a millennial, I remember I used to make greeting cards for my family on their birthdays or anniversaries, and there used to be this place called Archie's. जो अड्डा हुआ करता था, लाइक नो ओकेजन वॉज कम्प्लीट विदाउट गेटिंग अ ग्रीटिंग कार्ड फ्रॉम आर्चीज. सो वी टॉकिंग अबाउट द ग्रीटिंग कार्ड एरा. जो जेंजीज को नहीं पता होगा बेटा, व्हाट्सएप डीएम के जमाने के पहले की बात है ये. वी आर ऑल्सो प्लेइंग द 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी होती हैं 5 सेकंड के अंदर. आई नो इट साउंड्स वेरी वेरी ईजी, बट वेट अंटिल यू प्ले दिस गेम. अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, कॉल करो मुझे 800-1062 पर.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक, गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:06।
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: Introducing Alfred Coins. The new way insurancemarket.ae rewards you. Buy insurance. Earn Alfred Coins. Enjoy rewards. Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening. This is The Big Thrill, Mansi. And joining us right now is Hiteen. Hi, Hiteen. Good evening.
3: Good evening. Good evening.
2: कैसे हैं आप? कैसा रहा ये हफ्ता?
3: All fine, all fine. It's getting cold, so अच्छा है.
2: Getting cold? Where? From where is it getting cold?
3: Comparatively.
2: आप अलग ही दुबई में रह रहे हो जिसमें हम रह रहे हैं. अभी कोई कोल्ड वाली फीलिंग नहीं है फिलहाल. हितेन, आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन. आज है ग्रीटिंग कार्ड डे और मैं अपने स्कूल के दिनों को याद कर रही थी. मैं आर्चीज, यू नो देयर वाज दिस गैलरी, आर्चीज गैलरी, आई डोंट नो ये आपके सिटी में थी कि नहीं, बट वॉकिंग इन टू दैट स्टोर वॉज एन इवेंट फॉर मी. मैं इतने सारे कार्ड्स देखती थी एंड देन आई यूज टू पिक दो स्पेशल कार्ड्स फॉर माई स्पेशल पीपल. आई यूज टू ऑल्सो मेक हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड्स एंड आई स्टिल लव देम. तो आपकी कोई मेमोरी है ग्रीटिंग कार्ड के साथ?
3: यस, आई रिमेम्बर बिकॉज वहाँ पे ना हर ओकेजन के लिए ग्रीटिंग कार्ड थे. आई रिमेम्बर, मतलब वो स्टेशन के बाहर आर्चीज रहता ही था. आई एम फ्रॉम मुंबई.
2: तो मुंबई में ज्यादा आर्चीज होंगे. आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन. दो ही आर्चीज थे बट दैट यूज्ड टू बी द कूलेस्ट हैंग आउट प्लेस फॉर अस.
3: मुझे याद है मेरा एक दोस्त से फाइट हुआ था तो मैंने सॉरी वाला दिया था.
2: आई नो, बड़े क्यूट कार्ड्स होते थे. मुझे तो आज भी बहुत अच्छे लगते हैं ग्रीटिंग कार्ड. किसी लड़की को दिया था कभी फूलों वाला? दिया तो होगा. फिलहाल घर जाते जाते हम आपके साथ खेलेंगे 5 सेकंड रूल. मजेदार गेम है. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर.
1: 5 सेकंड रूल.
4: ओह या.
2: क्विकली नेम 3 things दैट आर रेड.
3: ओके, रोजेस
2: और
3: पेन.
2: टाइम खत्म. फटाफट खेलना है, फटाफट खेलना है सर. 5 सेकंड का टाइम है. 3 प्रिटी जिंटा की मूवीज.
3: कल होना हो
2: और फटाफट. हितेन फटाफट. 3 गुजराती डिशेस.
3: ओके, खमन, ढोकला
2: और
3: थेपला.
2: ये देखो, आप गुजरात से हो?
3: हितेन
2: भाई फटाफट खेलो ने, 5 सेकंड का गेम छे. ऑलराइट, 3 things दैट यू एब्सोल्युटली लव अबाउट नवरात्रि.
3: या सो गरबा
2: और टाइम खत्म हो गया. फटाफट मैं कह रही हूँ ना,
3: जलेबी फाफड़ा.
2: अरे सर 5 सेकंड. 3 चीजें जो आपके फ्रिज में मिलेंगी.
3: मिल्क
2: और
3: धनिया. और
2: धनिया? अच्छा, धनिया के पैसे यहाँ तो देने पड़ते हैं, इंडिया में नहीं देते हैं लोग, पर यहाँ देने पड़ते हैं.
3: वहाँ पे तो फ्री में दिया था.
2: हक है हमारा धनिया मिर्ची फ्री में लेना. 3 गाने जिनमें आता है हम.
3: हम आपके है कौन.
2: और टाइम भी खत्म हो गया सर. बहुत खराब, बहुत ही खराब खेला आपने, बहुत खराब.
1: 5 सेकंड रूल.
4: ओह या.
2: बट मजा बहुत आया आपसे बात करके. आई होप आपको भी मजा आया. हैव अ ग्रेट इवनिंग. एंड बस अभी ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट करना, ग्रीटिंग कार्ड वाली पे नहीं. ठीक है, चलो हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय हितेन.
3: बाय
2: बाय. 5 सेकंड रूल मैंने कहा ना, इट साउंड्स वेरी वेरी इजी, बट ये इजी नहीं है. खेलना है तो 800-1062 मेरा नंबर है. गिव मी अ कॉल.

0: खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। 106.2

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, ये है Big Thrill Mansi. We're bringing in the weekend and आ गई है पूनम जी, जल लीजिए ना, याद है?
2: हाँ जी याद है.
1: I love that movie. मैं वो movie कितनी बार देख चुकी हूँ.
2: हाँ, वो आती भी रहती है हर बारी सेट में.
1: मेरा सपना रह गया यार. मेरी मम्मी ने कभी मेरा अरेंज मैरिज सेटअप नहीं किया. अगर कभी करती हैं, अब तो चलो नहीं करेंगी क्योंकि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है, तो मैं ऐसी एक्टिंग 100% करती. जल लीजिए ना.
2: पर मेरे से वो कभी एक्टिंग हुई नहीं वैसे.
1: मुझे बहुत शौक है, मुझे वो एक्टिंग करनी है, बहुत मन है मेरा. फिलहाल पूनम कैसा रहा?
2: बिल्कुल ठीक है. नाइस टॉकिंग टू यू मानसी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है.
1: थैंक यू सो मच पूनम, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है. फिलहाल हम ग्रीटिंग कार्ड की बात कर रहे हैं. जितनी प्यारी आवाज है, मुझे लगता है बहुत ग्रीटिंग कार्ड्स मिले होंगे पूनम को.
2: नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मिले थे लेकिन एक्सेप्ट नहीं किए.
1: अच्छा, वाओ, एक्सेप्ट नहीं किए, वेरी नाइस. बट यू नो, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट, इट्स प्योर नॉस्टैल्जिया फॉर अस मिलेनियल्स. ग्रीटिंग कार्ड्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एफर्ट था, चाहे वो दोस्त का बर्थडे हो, दोस्त बीमार हो, एनिवर्सरीज हो. एंड गोइंग टू आर्चीज वाज माय फेवरेट थिंग.
2: यस मानती, आप बिलीव करोगे, मैं अभी भी जाती हूँ. आई एम फ्रॉम दिल्ली और मैं अभी भी आर्चीज जाती हूँ.
1: यू स्टिल हैव आर्चीज देयर?
2: या
1: यार, हमारा यहाँ भोपाल में आर्चीज कब का बंद हो गया, बिकॉज थैंक्स टू जेन ज़ीज नोबडी बिलीव्स इन ग्रीटिंग कार्ड्स.
2: नहीं, मैं तो जरूर जाती हूँ, बच्चों को भी लेके जाती हूँ अपने.
1: हाउ स्वीट, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू गेव समवन अ ग्रीटिंग कार्ड और यू गॉट वन?
2: आई ऑलवेज गिव टू माय किड्स. आई बिलीव इन कार्ड्स अ लॉट.
1: हाउ स्वीट, आई स्टिल लव ग्रीटिंग कार्ड्स एंड अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स डू गिव मी ग्रीटिंग कार्ड्स. मैं भी देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे लगता है गिफ्ट अधूरा है विदाउट अ ग्रीटिंग कार्ड.
2: बिल्कुल सही कह रहे हो.
1: फिलहाल घर जा रही हो पूनम, तो आपको खिलाते हैं 5 सेकंड रूल. मजेदार गेम है, आपको मिलेंगे 5 सेकंड. आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर.
0: 5 सेकंड रूल.
3: ओह यस.
1: नेम 3 थिंग्स दैट स्टार्ट विद द लेटर जी.
2: गुवावा
1: थिंग. फ्रूट. कोई बात नहीं, सांस ले लो. 3 शाहिद कपूर की मूवीज पूनम जी.
2: हैदर कमीने एंड कबीर सिंह.
1: नॉट बैड, विवाह नहीं बोला आपने फिलहाल. 3 ऐसी चीजें जो आपके पतिदेव के बारे में आप बदलना चाहती हैं.
2: जल्दी उठने की आदत, थोड़ा मेरे साथ टाइम स्पेंड करना और थोड़ा पैसा खर्च करना.
1: कंजूस है?
2: या लिटिल बिट.
1: ओहो. 3 रेड फ्लैग्स फॉर यू पूनम इन अ फ्रेंडशिप.
2: अगर कोई आपकी चुगली करता है, कोई आपकी आपके पीछे दुख में साथ नहीं देता है,
1: टाइम खत्म हो गया दुख में साथ ही. 3 मूवी टाइटल्स जिनमें आता है दिल. वेरी नाइस. 3 थिंग्स दैट यू कैन मेक आउट ऑफ पनीर.
2: पनीर बटर मसाला, पनीर टिक्का एंड पनीर चिली पनीर. चिली पनीर,
1: वेरी नाइस. अब आ रही है ट्रैक पे पूनम. 3 फालतू चीजें जिसपे पूनम अपने पैसे बर्बाद करती है.
2: बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे सैंडल, बहुत सारे बैग और कोरियन आइटम्स.
1: इसे बर्बाद नहीं कहते, इसे सेल्फ केयर कहते हैं.
2: बहुत ज्यादा हो जाए तो वो बर्बाद.
1: कोई बात नहीं, सेल्फ केयर जितना करो उतना कम है. प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जगह नहीं कपड़े रखने की.
2: Exactly.
1: मतलब अलमारियां अगर बोलती तो ये बोलती, बहन मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे छोड़ दो. पर अच्छा खेला पूनम आपने पहली बार के हिसाब से. नॉट बैड.
2: थैंक यू सो मच. थैंक यू मंथ.
1: यू हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग.
2: थैंक्स मंथ.
1: बाय.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, you have Big Thrill, Mansi. And remember the days jab WhatsApp nahi tha. Birthdays were not about Instagram stories. They were all about that thoughtful greeting card. Especially from Archie's gallery. I remember walking in there, felt like an entire event. I would spend a solid 30-35 minutes opening every single card, reading all those amazing messages and trying to find the one that exactly felt right. And let's be honest, greeting card ki jo value thi, wo ab aaj ke zamane mein text mein aur Instagram story mein nahi aati hai. Maine khud till date greeting cards sambhal ke rakhe, and I still love receiving and giving greeting cards. Aaj officially greeting card day hai. While I know the text is easy, it's easier form of just sending a happy birthday, happy anniversary, sorry, miss you. But there's nothing quite like holding a card someone actually took the time to pick out and hand it to you in person, or probably send it to you. ग्रीटिंग कार्ड्स के साथ आई थिंक मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता है. मैंने इतने सारे कार्ड्स आज भी संभाल के रखे हैं. आई स्टिल रिमेंबर अ कार्ड दैट माई फ्रेंड्स गेव मी व्हेन आई वाज फर्स्ट मूविंग आउट फ्रॉम भोपाल टू यूके फॉर माई स्टडीज. सो हियर्स अ लिटिल चैलेंज फॉर यू. स्किप द क्विक चैट मैसेज आज. आई एम टॉकिंग टू द मिलेनियल्स. जस्ट गो एंड फाइंड अ ग्रीटिंग कार्ड, आपको मिल जाएगा कहीं. राइट समथिंग स्वीट एंड जस्ट गिव इट टू समवन रियली रियली स्पेशल एंड मेक देयर डे ओल्ड स्कूल वे. आई थिंक एफर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रीटिंग कार्ड एफर्ट हुआ करता था. देयर इज अ पोल अप ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज. डू यू स्टिल कीप दोज ग्रीटिंग कार्ड्स जो आपने स्कूल में, कॉलेज में अपने दोस्तों से, प्रॉब्ली अपने पार्टनर से रिसीव किए थे, आप संभाल के रखते हैं? डू यू होल्ड देम क्लोज जस्ट लाइक आई डू? गो एंड वोट 106.2 बिग एफएम, दैट्स अ इंस्टा हैंडल. एंड इफ यू फाइंड अ ग्रीटिंग कार्ड, गेट वन. आई थिंक इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शोइंग एफर्ट.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:07।
2: बॉलीवुड।

0: earns kilometers. Now your car insurance earns rewards. Buy from insurancemarket.ae and earn Alfred coins. Call 800 Alfred.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: Exactly, we're flying you to Germany. It's time to check in and very, very simple. Participate karne ke liye sirf ek WhatsApp message karna hai. Big check-in अपना नाम 0543091062 पर. फिलहाल randomizer ने ढूंढ निकाला है नव्या को. Hi Navya.
3: Hi.
2: How are you? Good. कितनी cute DP है. एक तरफ I'm assuming के पापा हैं.
3: नहीं, दोनों, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई.
2: अरे इतना फर्क बड़े भाई छोटे भाई में.
3: 10 साल का फर्क है दोनों में. हाँ, बीच में मैं हूँ.
2: सॉरी हाँ, बड़े भैया. मैंने आपको सोचा पापा हो, बट पापा जैसे ही हैं बड़े भैया भी.
3: हाँ, जरूर जरूर.
2: मस्ट बी फन ना ग्रोइंग अप अराउंड टू ब्रदर्स.
3: यस, सो मच.
2: आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट टुडे हैपेंस टू बी अ ग्रीटिंग कार्ड. आपको तो कोई लड़का हिम्मत ही नहीं कर पाता होगा देने की ग्रीटिंग कार्ड. दो भाई दोनों तबाही.
3: ऑलरेडी लव मैरिज है.
2: अरे ये कैसे कर लिया नव्या आपने?
3: हो गया.
2: ओए होए, गट्स गट्स. डोंट टेल मी के भैयाओं के ही दोस्त थे.
3: नहीं नहीं नहीं.
2: हाँ ठीक है. फिलहाल व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ट्रैवल नव्या?
3: August, India.
2: India, I don't consider travel. That is a trip to meet family.
3: China. December.
2: Very nice. Yeah, China. Very good.
3: My twin's birthday was there. That's why we went to China.
2: Very nice. Yeah, मतलब हो आप शौकीन travel करने के?
3: Yeah, sure.
2: Germany गए हो पहले?
3: नहीं.
2: चलो जी.
3: बस अब Europe का नंबर लगाना है.
2: Europe नहीं गए अभी?
3: नहीं.
2: All the very best, giving you a chance. Hopefully, आपका नंबर लग जाए. फिलहाल तो आप shortlist हो गए, but उसके लिए भी आपको सही जवाब देना पड़ेगा. Let me see आपकी GK, that is German knowledge, कितनी अच्छी है. If you give me the right answer, आप हो जाओगे shortlist. So, all the very best.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: All right, Navya Madam, aapka question hai, on which continent is Germany located?
3: Europe.
2: देख ऑप्शन भी नहीं देने दिए. ड्रीम है ना इनका यूरोप जाना. बिल्कुल सही जवाब. कंग्रेचुलेशंस नव्या.
3: यू
2: आर शॉर्टलिस्टेड. यू जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम फ्लाइंग टू जर्मनी विद अस. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. होपफुली नेक्स्ट कॉल जो आए वो यही आए कि नव्या डेब्यू करो यूरोप में. अब टाइम आ गया है तो बस बप्पा का सीजन भी है तो कीप विशिंग.
3: थैंक यू सो मच.
2: हैव अ ग्रेट इवनिंग. हैप्पी वीकेंड.
3: Yeah, you too.
2: Bye.
3: Thank you. Bye-bye.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: इससे थ्रिलिंग एक्साइटिंग टाइम ऑफ द ईयर होता नहीं है. फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है एंड आई एम श्योर यू लुकिंग फॉर प्लेसेस टू शॉप फॉर योर फैशन, ज्वेलरी, होम डेकोर. आफ्टर ऑल नवरात्रि भी आने वाली है. बट आई गॉट द परफेक्ट प्लेस फॉर यू जहां यू विल गेट एवरीथिंग यू नीड दिस फेस्टिव सीजन अंडर वन रूफ. इस नवरात्रि एक्सपीरियंस कीजिए द फेस्टिव सूक एग्जीबिशन ऑन द 26th of September, सुबह 10 से रात 10 बजे एट द अलमास कॉन्फ्रेंस सेंटर विच इज राइट आउटसाइड जेल metro station. So even if you don't drive, it's very very easy. Shop from 45 plus exhibitors. They've got festive fashion, sarees hain, jewelry hai, home decor, khana peena, bahut kuch hai. Bachcho ke liye activities, exciting competitions, plus the UAE's Got Talent ka season 8 grand finale bhi yahan hoga, and a chance for you to win fantastic prizes like staycations and dinner voucher. Entry free hai, parking bhi free hai. Brought to you by Kids R Us with the Divalicious Beauty Salon, jewelry partner Biani Jewels, and this event is made large by us, Big 106.2, the Beat of Bollywood.

0: CreditMarkets.ae. Don't chase banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at CreditMarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
1: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलराज।
4: The big mix miss किया गया?
5: तुम कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
6: हाय निहार।
7: हाय अपनी।
6: क्या काम करते हो आप?
7: तो आई वर्क विद अ फिनटेक, तो मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो घर से ही काम कर रही थी।
6: अब मुझे बताओ वर्क फ्रॉम होम वाले ट्रिप पे जाके क्या माहौल बनाएंगे?
7: अब ट्रिप पे जाएंगे तो यार जितना भड़ास है जो लोगों से नहीं मिल रहा उतनी वहां जाके निकाल लेंगे।
6: ओके, वी गोना प्ले जीके कॉन्टेस्ट विद यू। जर्मन नॉलेज आपकी कितनी स्ट्रांग है हम चेक करते हैं। व्हाट करेंसी इज यूज्ड इन जर्मनी टुडे? ऑप्शंस आर पाउंड, यूरो और डॉलर्स।
7: यूरो।
6: अरे सोच तो लो।
7: यूरो।
6: मतलब वर्क फ्रॉम होम वाले इतने डेडिकेटेड है कि उनको आंसर से दिमाग में चढ़ा होता है, पता ही होता है।
7: इतना तो पता है।
6: Congratulations, that's actually the correct answer.
7: Thank you. और मैं तो उड़ने के लिए रेडी हूँ।
4: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 PM. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: Extremely slow moving, stand still. अगर आप नहादा वन के आसपास हैं, it is bumper to bumper. Reed Mall के पास भी traffic मिलेगा नहीं गुरेर। मनकूल उदमेठा करामा साइड अगेन वेरी वेरी स्लो मूविंग, 30 टू 40 मिनट डिले। हैवी ट्रैफिक नहीं है DIFC एंड बिजनेस बे। रेस्ट चेक जायद में मुझे ट्रैफिक ज्यादा दिख नहीं रहा है। दुबई मॉल के पास अगेन आपको बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा। There's also traffic if you're taking first Alkhel towards Alkuz 4. And heavy traffic at the moment near Barsha 1. Iske alawa kahin atke ho, mujhe batao 800-1062 par.
1: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: Big 106.2.
5: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
8: नहीं, ये तो मुफ्त है।
5: Good. क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
4: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Thrill with Mansi on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Hanji, ye hai Big Thrill Mansi and I love doing these throwbacks. So, aaj hi ke din back in 2012 ye movie aayi thi. I think ye by far meri favorite करीना कपूर की मूवी है. व्हेन आई टॉक अबाउट परफॉर्मेंस, अ वेरी डार्क, वेरी वेरी इंटेंस इमोशनल रोल. मधुर भंडारकर की ये मूवी थी एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इस मूवी के साथ बिकॉज ऐश्वर्या राय वॉज द फर्स्ट चॉइस, ओरिजिनल चॉइस फॉर द कैरेक्टर माही अरोरा. दे इवन स्टार्टेड शूटिंग फॉर द मूवी बट शूट को हॉल्ट किया एंड शी वॉज रिप्लेस्ड बाई करीना कपूर बिकॉज ऐश्वर्या अनाउंस्ड हर प्रेगनेंसी. देन करीना कपूर खान वोर ओवर 130 डिफरेंट ड्रेसेस डिजाइन बाई टॉप डिजाइनर्स लाइक मनीष मल्होत्रा इन दिस मूवी एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वार्डरोब्स ever to a single character in Bollywood history that time. Let me see how many of you remember this movie. Kareena Kapoor, saath mein Randeep Hooda, Arjun Rampal.
2: Confidence ke saath bolo na, to film industry jhoot ko bhi sach maan leti.
3: Mumbai Daily ki associate editor ho tum. Film stars ki friendship tumse nahi, tumhari position se hai.
2: Ye film industry hai. यहाँ या तो मैनिपुलेट कर लूं या हो जाओ.
1: आई थिंक करीना लुक्स stunning in this movie. Let me see how many of you remember the movie. If you do, give me a call 800-1062 par.
0: Big 106.2.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Friday ki sham hai, weekend ke feels hai, festive season bhi hai. I'm sure if you have Ganpati at home, you have a busy weekend. Probably you're visiting friends and family members for darshan. वैसे मुझे भी जाना है इस वीकेंड एंड मुझे ना कहीं नई जगह जाने में अभी काफ़ी डर लगता है. अब ड्राइविंग तो मेरी ठीक ठाक हो गई है 5-6 महीने में. यार मैप्स देखना इज अ टास्क. आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु कैन फॉलो द मैप्स. आई कांट डू दैट एट ऑल. ओके आई हैव द ऑडियो वर्जन ऑफ इट इज वेल बट वो बोलता है इस एग्जिट जाओ, मैं पहुँच कहीं और जाती हूँ. नॉर्थ वेस्ट मुझे समझ नहीं आता है. इतना तो एग्जिट मैंने मिस कर लिया है अभी इन 5 महीनों में जितना आई डोंट थिंक सो प्यार करने वालों ने एक दूसरे को मिस किया होगा दूर रहते हुए. सो आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर पीपल. इफ यू हैव एनी ट्रिक्स टू नॉट मिस एग्जिट्स एंड अंडरस्टैंड दीज नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, प्लीज डू लेट मी नो. यू कैन सेंड मी अ DM 106.2 बिग FM इट इज़.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 35 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 31, फिलहाल ह्यूमिडिटी 64% पर।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया, सुनो। नाम या दाम?
2: नाम।
3: Money follows, my brother.

0: ना पगला दूंगा पूरे देश को.
1: Smart people compare before they buy, especially insurance. Let insurancemarket.ae find you great cover at a great price. Why pay more? Call 800 Alfred.
2: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
3: फ्राइडे की शाम है, वीकेंड वाला माहौल है. फिलहाल आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन हियर. थ्रोबैक टाइम था, 2012 में ये मूवी रिलीज हुई थी. मधुर भंडारकर की मूवी जो अर्ली 2000s में काफ़ी रियलिस्टिक सिनेमा बनाते थे, चाहे वो चांदनी बार हो, फैशन हो या फिर ट्रैफिक सिग्नल. एंड ऑफकोर्स दिस मूवी, करीना कपूर ऑफकोर्स वॉज अ पार्ट ऑफ द मूवी, बट ओरिजिनल चॉइस ऐश्वर्या राय थी. फिलहाल ऐश्वर्या राय की बात हुई है तो समीर आ चुके हैं. समीर, ठंडी हवा के झोंके, कब आएगी ठंडी हवा यूएई में?
4: आ रही है धीरे धीरे,
3: बहुत स्लो आ रही है, वेरी स्लो मूविंग. थोड़ा फास्ट करवाओ.
4: वो बोलते ना, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आ रहे तो सही है.
3: हाँ, मतलब आई कांट वेट फॉर द गुड वेदर. फिलहाल समीर, व्हाट प्लान्स द वीकेंड इज हियर?
4: कुछ खास, एक दोस्त का बर्थडे है तो उसके बर्थडे पार्टी में जाएंगे.
3: बहुत बढ़िया, तो ट्रीट दे रहा है वो.
4: ऑफ कोर्स, एकदम बड़ी धिंगाने वाली पार्टी है.
3: कौन सी वाली पार्टी है?
4: फुल ऑन धिंगाना.
3: व्हाट इज धिंगाना?
4: धिंगाना आपने बॉम्बे के लैंग्वेज में बोले तो फुल ऑन फन.
3: वाओ, ये मैंने नया वर्ड सीखा. आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई. भिंगाना.
4: भिंगाना.
3: थैंक यू सो मच. माहौल अभी से बना लिया है पार्टी का, कहीं शुरू तो नहीं हो गए वो?
4: नहीं, अभी थोड़ा टाइम और बाकी है.
3: मुझे लगा कि नहीं, अभी से ही माहौल बन गया. फिलहाल मैंने जो हिंट्स आपको दिए थे, तो मूवी कौन सी थी समीर?
4: तुम्हें गा के बताओ.
3: गा के बता दो सर.
4: हीरोइन.
3: बिल्कुल सही जवाब. क्या कमाल मूवी थी. मतलब बॉक्स ऑफिस पे मुझे नहीं पता ठीक ठाक काम नहीं कर पाई. मुझे ये मूवी बड़ी अच्छी लगती है, स्पेशली करीना कपूर इस मूवी में एज माही अरोड़ा.
4: क्या है, माशाल्लाह,
3: सुंदर. शी वाज लुकिंग सो स्टनिंग इन द मूवी.
4: सही है.
3: ऐसी कोई है आपकी जिंदगी में हीरोइन जो नखरे दिखा रही है?
4: है ना, मेरी हीरोइन, मेरी खुद की हीरोइन, माय वाइफ.
3: अच्छा,
4: फरहीन.
3: फरहीन, तो नखरे उठाते हो फरहीन के?
4: अभी उठाने पड़ते ना.
3: अच्छा, कोई चॉइस ही नहीं है. आए हाय,
4: उल्टा सीधा बोले तो अभी मुक्का पड़ेगा.
3: तो फरहीन जा रही है क्या ये दोस्त की बर्थडे में, जहाँ पे भिंकाना, क्या है, ढिंकाना होने वाला है? आपने वीकेंड का माहौल बना ही दिया है, एनर्जी जो है वो बदल ही दी है, तो हम भी शुरुआत करते हैं पार्टी की यहाँ पर. सो दिस इज गोइंग आउट टू समीर एंड ऑल दोज हु आर पार्टीइंग एंड ऑफ कोर्स टू करीना कपूर एंड द मूवी हीरोइन. थैंक यू सो मच समीर, हैव अ ग्रेट इवनिंग.

0: 8:38 एंड इफ यू वंडरिंग कि यार आज का दिन अच्छा नहीं गया था, यू नो जिंदगी में कुछ भी हो जाए सबसे बुरा तब लगता है व्हेन यू पुट द फोन ऑन चार्जिंग एंड यू फॉरगेट टू स्विच ऑन द चार्जर और द प्लग पॉइंट.
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: 1.5 घंटे से फोन चार्जिंग पे लगाया, अभी उठा के देखा तो अभी भी 12% पे है. मतलब मैं ऑन ही करना भूल गई. आई थिंक हो गया है, काफी लॉन्ग वीक हो गया एंड आई हैव प्लान्स फॉर दिस वीकेंड. बाय द वे प्लान्स मेरे बहुत ही सिंपल होते हैं, घर की सफाई करना, ग्रोसरी लेके आना. बट इन प्लान्स के बीच इट्स बिन अ वाइल, मैं थिएटर जाके अकेले मूवी देख के नहीं आई. फॉर ऑल दोज हु गो एंड वॉच मूवीज अलोन दे विल अंडरस्टैंड द जॉय. इट इज सो मच फन एंड आई वांट टू वॉच दिस मूवी बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ मेघना गुलजार. मूवी का नाम है दायरा, ये आज रिलीज हो चुकी है. करीना कपूर साथ में पृथ्वीराज सुकुमारन एंड दोनों साथ में पहली बार ऑन द बिग स्क्रीन दिखाई देंगे. दिस इज प्रोड्यूस्ड अंडर द बैनर्स ऑफ जंगली पिक्चर्स एंड पेन स्टूडियोज. अ मूवी इज इंस्पायर्ड बाय रियल True life events, क्योंकि मेघना गुलजार हमेशा रियलिटी पे ही मूवी बनाती हैं, चाहे वो राजी हो या तलवार हो. एंड काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल किस्सा था 2019 का एंड दिस वॉज अबाउट अ पुलिस एनकाउंटर केस इन हैदराबाद. सो या दैट्स माई प्लान फॉर द वीकेंड, टू गो एंड वॉच करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन. इट्स अ क्राइम ड्रामा, इट इज अ मिस्ट्री दैट आई टोटली लव एज अ जॉनर. अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो वो थिएटर्स में नहीं जा पाएंगे. 18+ है ये मूवी एंड कांट वेट. दिस इज माय प्लान फॉर द वीकेंड. व्हाटएवर यू आर प्लानिंग, डू नॉट फॉरगेट टू चेक इन. वी आर आल्सो टेकिंग यू टू जर्मनी. अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप नहीं किया है, यू वांट टू फ्लाई विद टीम बिग, डू इट राइट नाउ. बिग चेक इन अपना नाम टू 0543091062.

ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हम से बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: वीकेंड वाली फील, वीकेंड वाली वाइब, राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. एंड इसी वाइब, इसी माहौल के साथ बाय बाय कहने का टाइम.
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: Time for me now to say goodbye, good night. I will see you tomorrow over the weekend. Also, we keep you company with some fantastic music and, of course, a lot of fun things on our Instagram, 106.2 Big FM it is. So make sure you follow us there. Weekend pe I keep you company with the top 40 biggest hits of the week. So agar aap guess karna chahte ho, prediction dena chahte ho, is hafte number one gaana kaun sa hoga, uske liye bhi Instagram pe jana padega. You can say hi to me. I'm Mansi talking. You have a great, great, great weekend. Main hamesha kehti hoon, weekend pe agar kuch ना करने का दिल हो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं. इसी नोट पर आई एम गोना लीव यू. हैव अ फैंटास्टिक वन, गुड नाइट.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. सम नाइट्स नीड नो वर्ड्स, जस्ट द राइट वाइब. सिंक इनटू द बिग चिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mugembo! Khush hua!
3: 3 things that are white in color and you can eat.
4: खीर
3: दही दूध. वेरी नाइस. मतलब किचन में जाते हो आप, बीवी की हेल्प कराते हो आप?
4: हाँ हाँ बनाता हूँ, जब जब बनाता हूँ मैं.
3: हाँ बना तो नहीं रहे हो ना मुझे फिलहाल. 3 ऐसी आपकी आदतें जो वाइफ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं.
4: वॉच क्रिकेट ओवर द फोन एवरी टाइम.
3: ओए टाइम खत्म. 3 रोमांटिक निकनेम्स जो आपने अपनी डार्लिंग वाइफ को दिए हैं.
4: जंबो, जानू, शोना.
3: ओए सो क्यूट. तो करते हो क्या, मेरे शोना ने खाना खाया, मेरा शोना गुस्सा है?
4: नहीं नहीं मैं ज्यादातर जंबो बुलाता हूँ.
3: वेरी नाइस. वो आपको क्या बुलाती
4: है? वो है नहीं, वो नाम सिर्फ, वो भी ऐसे कुछ डफर बुलाती.
3: वेरी क्यूट. आई लव दीज निकनेम्स. 3 झूठ जो आप बीवी से बोलते हो दोस्तों से मिलने के लिए.
4: आज हम लोग लंच पे जा रहे हैं.
3: नहीं नहीं नहीं, टाइम खत्म हो गया. नॉट बैड.
0: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. No rush. No noise. Just soul-soothing music on a moonlit ride. This is The Big Chill on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटाएगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: lo-fi and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Love, lo-fi and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2. The beat of Bollywood.